0: जिसके तब तबे से रंग दुश्मनों का दर्द है,
1: जिसके तब तबे से रंग दुश्मनों का दर्द है,
0: हबीब मुस्तफा।

0: इमाम हुसैन अलैहि सलाम चंद फरमायो, हरगिज उन्हें माणन मंजा न थींजो जेके बेन जी गुनाहों ते खौफजदा आए पेंजे गुनाहों का गाफिल हुंदा आहेन।
1: हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है, निकल निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
2: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

0: सभी शहीद मौतेबर, मगर हुसैन एक है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

चयो आहे। चयो 1500 खां वधीक ज़ख़्मी। सिहत वारी वज़ारत तसदीक करे छॾी आहे त सोएं इमारतूं कट 10,000 खां वधीक माण्हू मलबे हेठां दबल हण जो ख़दशो। खरियल इमारतुनि जी मलबो हटाइण लाइ ऑपरेशन जारी। विंदरा जे वक़्ती सदर मुल्क में इमरजेंसी लागू करे छॾी। अमरीकी जूलॉजिकल सर्वे मूजिबि विंदरा में ज़लज़ले सबबु फौतुनि जो अंग 1,00,000 ताईं वञी सघे थो। अमरीकी सदर पारां इदारनि खे विंदरा जी तकड़ी मदद करण जी हिदायत। जेकॾहिं ईरान खे एटमी मिली विया त पहिरें ई कलाक में इस्तेमाल कंदो। कंहिं बि सूरत में ईरान खे एटमी हथियार हासिल करण न ॾींदासीं। अमरीकी सदर ट्रंप जो मीडिया सां ॻाल्हियूं। सदर ट्रंप ज़रात बाबति एग्ज़ीक्यूटिव

कादर ते सही करे छॾी। संदसि चवण आहे त ज़रात जे शोबे में नई जदत आणींदासीं, जल्द ईरानी फंड्स मां कणक सोबाइन ऐं मकई ख़रीद कंदासीं। ईरानी पासदारान इनकलाब ऐं अमरीकी सीनेट काम अख़्तियारियूं दोहा में मुलाक़ात कंदियूं। मुलाक़ातुनि दौरान ॿिन्ही मुल्कनि विच में ख़िलाफ़ ख़तम करण जी कोशिश कई वेंदी। ईरान ऐं विच ओभर जी रियासतुनि सां अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं जेके अॻु में न आहिनि कयूं। अमरीकी नायब सदर जी डिवेंस जे बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट खे इंटरव्यू जे डिवेंस चयो त अमरीका ऐं ईरान सिधी राब्ते में जनरल क़ाइमु करण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। सिधी राब्तनि दौरान मुख़्तलिफ़ माशी मरातनि ऐं सहकार ते ॻाल्हि ॿोल थींदी। गडियल अरब इमारात ईरान सां अहिड़ा नवां राब्ता क़ाइमु कया आहिनि जेके अॻे न हुआ। उन्हनि राब्तनि में ईरानी पासवान इनकलाब सां राब्ता बि शामिल आहिनि। ईरान अब महूर बस मां चार आयल टैंकर्स वापसि मोकिले छॾिया। बरतानवी अख़बार मूजिब जहाज़नि पाकिस्तान इनकलाब जे हिदायतुनि ते रस्तो तब्दील कयो। हुन खां गुमान जहाज़नि ते आवज़ी बहरी रस्तो ॾिनो हो। ओमान जे ॾखण ओभर साहिल इलाक़े में कार्गो जहाज़ जे हमले जा बि इतलाउ।

अपने हुरमत खे कंहिं हिक मुल्क जी मिल्कियत तौर क़बूल न कंदासीं। खिते में चटादार अमुन खे यकीनी बणाईंदासीं। अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्क रूबियो चयो आहे त खिते में इतिहादनि जी तरक़ी खु़शहाली चाहियूं था। टीह जूं टिन टेक्निकल टीमूं ॿीहर ईरान सां एटमी प्रोग्राम पाबंदनि बाबति ॻाल्हियूं कंदियूं।

पाकिस्तान खे अकेलो करण जी कोशिश कंदड़ पाण अकेला थी विया आहिनि। पाकिस्तान दुनिया में अमूनीदड़ मुल्क बणजी वियो आहे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान ज़िमेवार एटमी मुल्क आहे। अमरीका ईरान जंग में अलाह पाकिस्तान खां कम वरितो। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल जंग जे ख़ात्मे लाइ ॾींहं राति कम कयो। हाणे मामला दुरुस्त रुख में वञी रहिया आहिनि। मुल्क में मुआशी इस्तक़ाम तरफ़ वधी रहियो आहे।

0: संग्राम जी मासूम प्रिया कुमारी के जमीन गी वही आसमान खाई वयो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन फरमायो जी को कहे मोमिन जी कुर्बे गम के दूर करे खुदा उन्हें जी दुनिया आए आखरत जी गम परेशानन के दूर।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: ऐ करबला की खाक इस एहसान को ना भूल तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशाए बतूल।
2: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

चार जा निब फिर वही है करबला। मौत को देकर शहादत से शिकस्त, जिंदगी ही जिंदगी है करबला। जिंदगी की आ गई।

हैदराबाद जामशोरो दादू मटियारी टंडो अलैयार टंडो मोहम्मद खान बदीन सजावर छठे जिले शहरों में अदारी जारी मुख्तलिफ शहरों में एकतल मातमी जुलूस मंजिल तरफ रवान दवा सिक्योरिटी इंतजाम इंतई सख्त पुलिस से गड रेंजर जवान भी मुकर थियल।

0: अरे तुम किन की तरफ रोटी भीग रहे हो, तुम किन की तरफ खजूर भी पड़ा रहे हो, ये कोई आम बच्चे नहीं है, ये हाशमी खानदान के बच्चे हैं। ये कह के बीबी ने वो रोटी और खजूर उनकी तरफ वापस भेजा और वो रोटी और खजूर किसी बच्चे ने कबूल नहीं किया। ये अमली काम, ये खुतबे से पहले की बात है। और फिर बीबी ने खुतबा दिया, और खुतबा जब बीबी ने दिया है तो किस तरीके से खुतबा दिया, बीबी ने कूफे में भी खुतबा दिया और बीबी ने जाके शाम में भी खुतबा मुख्तलिफ मुकामात पे मंजिले कूफा और शाम में मुख्तलिफ जगहों पे बीबी ने खिताब कूफे में उम्मुल बनीन ने मकसद हुसैनी तरीके से इन्हराफ से लोगों को बचाया। मैं कुलसूम ने आके जब खुतबा दिया तो इस तरीके से बीबी खुतबा देती हुई नजर आ रही है कि आवाज देके कहती है कि ए लोगों पहचानो कि जो ये लोग जो हम आ रहे हैं, हम बिनते रसूल हैं, हम बिनते रसूल हैं। तुमने ए कूफे वालों पहचाना है नहीं, हम तो यहाँ की शहजादियाँ थी। आज तुमने हमारे भाई के कत्ल में अपने हाथों को रंगी किया है। याद रखो कि हम ही अली की बेटियाँ ज़ैनब व उम्मे कुलसूम हैं, और तुमने हुसैन के खून को बहाकर अपने हाथों अपने आप को जहन्नुम के रास्ते पे गामजन कर दिया है, और जहन्नुम अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस तरीके के जुमला कहने के बाद बीबी ने जब ये काफिला पहुंचा है, कहां अभी राह कूफा ही में था, बीबी ने आवाज देके कहा, ए शिम्र तू जानता है कि हम आले रसूल हैं और लोग तमाशाई बन के हमारी तरफ देख रहे हैं, और तुम्हारी औरतें तो पर्दे में बैठी और हमें तुमने बेकजावा ऊंटों पे सवार किया है, तो कम अज कम ऐसा करो कि तमाम सरों को जो किनों के नौजा पे बुलंद है इनको आगे कर दो और हमारे काफिले को पीछे कर दो ताकि लोगों की निगाहें हम पर ना पड़े। ये कहा बीबी जनाब उम्मे कुलसूम ने, और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा गुफ्तगू थी कि जो खिताब किया उस वक्त के तमाम अश्किया को जो के लेके जा रहे थे इस काफिले को, और बीबी ने खिताब किया कि सरों को आगे कर दो ताकि लोगों की नजर हम पे ना पड़े और हमें एक ऐसे दरवाजे से लेके जाओ जहां ज्यादा तमाशाई मौजूद न हो। अगरचे के हमारी बीबियों ने मुसलसल लोगों को मुतारिफ कराया, बताती चली गई कि हम कौन है। बीबी उम्मे कुलसूम ने इस तरह खिताब किया क्योंकि बीबी उम्मे कुलसूम को अगर पहचानना है तो यहीं से पहचानिए कि जब बीबी उम्मे कुलसूम इमाम अली की वो साहबजादी हैं कि जब इमाम अली की शहादत का वक्त आया था तो आखिरी वक्त बीबी उम्मे कुलसूम के घर से गए हैं, और बीबी उम्मे कुलसूम के घर से जब गए हैं तो आखिरी दावत में बीबी उम्मे कुलसूम ने अपने बाबा को जब दूध और नमक और रोटी दी तो बीबी से कहा कि ऐ मेरी बेटी एक चीज को हटा लो, तो बीबी ने चाहा नमक को हटाए तो कहा कि नहीं बेटी, कभी तुम्हारे बाबा ने एक वक्त में दो गजा नहीं खाई और नमक के सिवा कोई और चीज नहीं खाई, और जब मौला इमाम अली को जरूरत लगी है तो इमाम जब घर की तरफ आए तो बीबी उम्मे कुलसूम ही का जिक्र किया और कहा मेरे असाब पलट जाओ, मेरी बेटी उम्मे कुलसूम की आवाज कहीं तुम्हारे कानों में ना चला जाए। ये अजमत थी उन बीबियों की जिनको असीर बना के कर्बला में ले जाया जा रहा है। लिहाजा बीबी उम्मे कुलसूम वो अजीम बेटी हैं इमाम अली की के जिन्होंने जनाब ज़ैनब के साथ मिलके तमाम रास्ते में बच्चों को संभाला, और जब बीबी निकलती हैं बीबी सकीना बिनतुल हुसैन को ढूंढने के लिए तो बीबी कुलसूम ने मुसलसल अपनी बहन का साथ दिया और बीबी सकीना को तलाश किया और ये मुसलसल खुतबा देती हुई शाम के जिंदान और शाम के बाजारों से होती हुई पहुंची। और तीसरी शख्सियत जो खवातीन कर्बला में नुमाया नजर आ रही है, क्योंकि सबसे पहला खुतबा जनाब ज़ैनब ने दिया, दूसरा खुतबा जनाब उम्मे कुलसूम ने दिया, और तीसरा खुतबा जो नजर आता है सबसे ज्यादा जिसके लिए खुद इमाम हुसैन अपनी बेटी का जिक्र करते हैं वो फातिमा बिनते हुसैन है, जिन्हें फातिमाए कुबरा भी कहा जाता है।
1: कर्बला और खवातीन बयान कर रही हैं ताहिरा मेहदी।
0: ये कर्बला में वो बीबी हैं कि जब इमाम हुसैन आखिरी रुख्सत के लिए आए हैं तो इमाम ज़ैनुल आबदीन अलील थे, बीमार थे, तो बीबी फातिमा कुबरा को इमाम हुसैन ने बहुत एक ऐसी किताब जिसमें तमाम आलमीन का जिक्र था, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर बात का जिक्र था, अमानतन दिया है बीबी को, और अमानतन जब बीबी को दिया कहा कि इसको तुम जब मेरा बेटा ज़ैनुल आबदीन को शिफा हो तो ये पहुंचा देना। ये बीबी फातिमा कुबरा बहुत जलीला खातून है।

सखर नाड़काने डिवीजन में बाज़ारदारी जारी। सखर खैरपुर घोटकी जिले के नंडन वलन शहर में मातम जारी। रोड रस्तन से सभी लगल लाड़काणो कंबर शिरादकोट जगमबाद कश्मोर कनकोट शिकारपुर जिले के नंडन वलन शहर में बाज़ारदारी जारी। सिक्योरिटी सख्त है।

0: इमाम हुसैन ऐं जानसारनि जी अज़ीम क़ुर्बानी इस्लाम जो सरमायो आहे। सभिनी खे हमेशा हक़ ऐं सच सां गॾु बीहण घुर्जे। कराची में मरकज़ी मातमी जलूस में ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त मुहर्रम जे मौक़े ते को ख़ासि ख़तरो न आहे, पर पाकिस्तान जा दुश्मन ताड़ में रहंदा आहिनि। मुहर्रम जी सिक्योरिटी लाइ 60,000 अहलकार ऐं अमलदार मुक़ररु कया आहिनि। प्रिया कुमार जी बाज़ियाबी लाइ पुलिस कोशिशूं करे रही आहे, पर अञा बाज़ियाब नाहे थी। पाकिस्तान जी दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में बि करबला जे शहीदनि जी यादि में अज़ादारी। इराकी शहर करबला में हज़ारे अज़ादारनि जी आमद। करबला शहीदनि जी यादि में अज़ादारी। ईरान, शाम, यमन, लीबिया, बंगलादेश ऐं भारत में बि अज़ादारी जो सिलसिलो जारी। करबला में इस्लाम लाइ लाजवाब क़ुर्बानी ॾींदड़ इमाम हुसैन अल इस्लाम ऐं सन साथियुनि खे भेटा पेश। आई मलीर जे इलाइक़े खोखरापार जे हिक घर मां माउ ऐं धीअ जा फाहू लॻल लाशत। पुलिस मूजिबि औरत जी सुञाणप सबाज़ाल मोहम्मद हनीफ़ ऐं निंगरी सुञाणप नबीहा धीअ मोहम्मद हनीफ़ तौर थी आहे। लाश इस्पताल मुंतकिल करे छॾिया। वधीक जांच जारी।
1: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली की नवी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मर्सिया तहतुल लव्ज अदा करेंगे।
4: कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
3: आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात।
5: हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद।
3: मर्सिया तहत

0: आए वक्त अब्बास की रुखसत का हुआ जाता है, आइए मश्क से पानी भी बहा जाता है। शाह पहुंचे तो ये नाला हुआ लब पर जारी, हाय किस्मत के अकारत हुई मेहनत सारी, अपनी मजबूर भतीजे पर चचा हो बारी, अर्ज सुन ले के गशी होती है मुझ पर तारी, पूछ बैठे जो सकीना के चचा जिंदा है, कुछ न कहिएगा बजुज इसके कि शर्मिंदा है। अलकमा पर जो अलमदार ने बाजू खोए, अर्श पर जिन्न मलक फर्श पर इंसान रोए, आंसुओं से हरम शाह ने चेहरे धोए, बख्त तहजीब के सोए तो फिर ऐसे सोए, दिल की मीजान पे हर शख्स अधूरा उतरा, फिर न मेयार वफा पर कोई पूरा उतरा।
1: हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है, निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
2: आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात।

0: का शो।
1: इमाम हुसैन अलैह सलाम चंद फरमायो, ज़ालिमन सां गॾु रहण पाण हिकु वॾो ज़ुल्म आहे।
2: मर्सिया तहतुल लफ़्ज़ बाउनवान तदबीर अदा करेंगे मोहतरम कमर ज़ैदी।
3: ए फिक्र जरा चा के गरीबों को रफू कर, ए चश्म अज़ा अश्क मवद्दत से वुज़ू कर, ए जोश विला असर नौ दिल से नमू कर, और मुमकिन जो खिरद से न हुआ काम वो तू कर, इम्कान न रह जाए कोई बेअदबी का, ममदूह नवासा है रसूल अरबी का। ए अब्र करम तेज बरसने की कसम खा, ए मौज सफीना लिए साहिल की तरफ आ, ए आह जरा आलम बाला की खबर ला, मंजिल का पता चाहिए ऐ नक्शे कफे पा, ए वाद गरज और मेरा एहसास जगा दे, ए बर्क जरा अर्श से पैगाम तो ला दे, ए बाद मुझे ऊंचा उड़ाने के लिए चल, ए शोले गम राह दिखाने के लिए जल, ए मौसम गुल शाख तमन्ना के लिए फल, मसरूफ हूँ ए मौत ठहर आज नहीं कल, हाँ बहर शफाहत कोई तदबीर तो कर लूं, दिल खोल के मैं मिदहत शब्बीर तो कर लूं। तो इमरोज मेरी फिक्र का उन्वान है तदबीर, मकसूद है शब्बीर के आमाल की तफसीर, या रब हो अता नूर हिदायत से वो तनवीर, आवाज में ढल जाए ख्यालात की तस्वीर, निकला हूँ इरादा लिए तस्खीर सुखन का, कहना है मुझे मर्सिया एक तिश्ना दहन का। तो हाबील के हाथों से हुआ कत्ल जो काबील, वो आग को गुलजार बनाने की तफासील, क्या भूल गए मारकाए फीलो अबाबील, कितनी है मेरी फिक्र तदब्बुर की तमासील, सूरज मेरी तदबीर से पलटा था निकल कर, बस गुफ्तगू करना तो जरा सोच संभल कर, तो चाहा कि मेरा इल्म मेरे काम भी आए, हर लब मोहम्मद का मेरे नाम भी आए, इंसान बनाया है तो इस्लाम भी आए, दुनिया में मेरा आखिरी पैगाम भी आए, खतरे में घिरे जब तो बचाए उसे शब्बीर, नेजे की अनी पर भी सुनाए उसे शब्बीर, क्यों कर हो बयां सिप्ते पैगंबर के फजाइल, यकजा है इमामत में रिसालत के खसाइल, था वक्त के दरपेश थे मुझको भी मसाइल, काम आए मेरे आले मोहम्मद के वसाइल, जब कुफ्र खुदाई की जड़ें काटने आया, उस वक्त हुसैन इब्ने अली सामने आया, और एक काम जो मुश्किल था कि हो कुन फयकू से, लेना था मुझे बंदा मोमिन के जुनू से, एक शिद्दत एहसास से, एक मौजे खून से, एक इज्ज की बस्तू से, एक जाम की हूं से, किरदार शहीदों के थे तहरीर मेरी थी, ए ज़हने बशर करबला तदबीर मेरी थी, एक बारगाह इल्म से भेजा गया आमिल, तरतीब दिए उसने तवज्जो से अवामिल, यकजा किए किरदार जो दरकार थे कामिल, यूं मेरे तदब्बुर में 72 हुए शामिल, है दस्ते बशर में मेरी तदबीर का होना, इंसान की तकदीर में शब्बीर का होना, सब आले मोहम्मद हैं हकीकत में अजायब, नजदीक भी आते हुए डरते हैं मायब, झेले चले जाते हैं मसायब पा मसायब, लेकिन वो तहम्मुल है कि तकदीर भी तायब, हैरान है मलाइक भी परेशान है सारे, क्या इनके मुखालिफ भी मुसलमान है सारे, कुछ याद है क्या कुछ न हुआ था।

फनियाकल वेझो औरत मुबैना तौर से कार इल्ज़ाम हेठ कतल लाश दरिया में लोढ़ियो पो कच्चे वारे इलाके में नवीदा धी फिरोज महर के मुबैना तौर से कार इल्ज़ाम हेठ कतल किया पुलिस वाकई जांच शुरू कर छी है जांच बाद ही हकीकतू सामू इंदियूं।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन फरमायो, खुदा जी नेमतुन मां हिक नेमत माणन जो अमावट हाजत खणी अचण आहे। बस इन नेमत ते खफो महसूस न करियो, न त इहा नेमत तकलीफ़ में तब्दील थी वेंदी।

0: आमा बुधी रहा आयो जी एफ एम नेटवर्क ते महरमुल हराम जी खुसूसी ट्रांसमिशन
1: हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद।
2: मर्सिया तहतुल लव्स बाउनवान हाथ अदा करेंगी डॉक्टर रुबीना नकवी।
3: जिस हाथ में कलम है हशम उसके हाथ है, जो हाथ खुद कलम है अलम उसके हाथ है। हर एहदे तिश्तगी का तमद्दुन लिखे जो हाथ, आसार व इर्तका का भरम उसके हाथ है। बरहम करे सफ़ों को जो तरतीब के लिए, वो हाथ एक सबील है तहजीब के लिए। एक पल्ला तवाज़ु ने फतह शिकस्त हाथ, एक दस्ते तारुफ़ी बूद व हस्त हाथ। वो हाथ जो इशारा मंजिल शुमार हो, सिमतों का जाविया है वो मशल बदस्त हाथ। पे हम रमा नशे बे सफर पाटता हुआ, यलगार तीरगी की रसद काटता हुआ। बेनाम मंजिलों को निशानी दिए हुए, बेआब नखल जहन को पानी दिए हुए। जो रास्ते हैं मंजिल नौ की तलाश में, उन रास्तों को गर्म रवानी दिए हुए। मंजिल नुमा है जो उफ़क़े मुमकिनात पर, वो हाथ एक चराग है बामे हयात पर। ऐसा कफील हाथ सितारे से कम नहीं, खुद इसकी रौ भी वक्त के धारे से कम नहीं। जो हाथ रोशनी की अलामत का हो नकीब, वो हाथ रोशनी के मीनारे से कम नहीं। उकदा कुशाए उकदे दुश्वार है यही, ता दौर पर चमे सफर आसार है यही। ये जो रिवाज मंजिलो दर में है जिंदगी, ये जो हुजूम शाम व सहर में है जिंदगी। इस सारी जिंदगी का खुलासा फकत ये है, गर्दिश में हाथ है तो सफर में है जिंदगी। सारी उड़ान सारी फजा शहपरों से है, साबित कदम हयात इन्हीं लंगरों से है। हाथों के लंगरों को भंवर रद्द न कर सके, तूफान हजार थे पे जदो कद न कर सके। हाथों के बादबान ने जो रोके हवा के वार, गर्दाब कश्तियों को मुकैद न कर सके। जौलां हुए तरा रहे रफ्तार की तरह, कुलजम को काटते रहे पतवार की तरह। बेरब्त सिलसिलों के किनारे मिला दिए, बेरास्ता जमीन में रस्ते बिछा दिए। बेरंग था ये सफ़े हस्ती तो हाथ ने, कोरे वरक पे जहन के सोते जगा दिए। यानी रकम शुदा ये जरीदा है हाथ का, कारे जहां तमाम कसीदा है हाथ का। ये इर्तका के दोष पे ईजाद का आलम, तखरीब के जुलू में ये तामीर का हशम। खेतों में दौड़ती हुई पगडंडियों की रौ, ये बस्तियां ये शहर ये राहों के पेचोखम। पेचा हैं ये जो वक्त की लोहे जबीन पर, खींची हैं हाथ ने ये लकीरें जमीन पर। राहों में मोड़ दे ये जिधर रोशनी की बाग, छिड़ जाए दश्तो दर में नई जिंदगी के राग। देकर रुई के नरम से गाले को लौ की शक्ल, और शक्ल की जबीं पे सजा के शरर से आग। सयाल रोशनी को उतारे अयाग में, मट्टी के ठीक रे को बदल दे चराग में। बदले हैं हाथ ही ने मजाहिर ये कुल के कुल, बेजान लकड़ियां कहीं कश्ती कहीं है पुल। तय करके सारे मरहले कतो बुरीद के, फिर ताजा मरहलों से सजाता है शहर गुल। गाजा है इसके लम्स करुए माश पर, तनहा रवां है राह तराशो खराश पर। जब नकल की तराश से निकला कलम का कद, जाहिर हुए निगाह पे अफकार के जसद। नुक्तों की तुख्म केश व नमूगीर फसल में, कागज पे ले लहाने लगा सब्ज़े खिरद। आया कलम जो मौजे खरामी के वास्ते, बढ़ने लगे हरूफ सलामी के वास्ते। हाथों से जहल के जो सफर छूटने लगी, दीवारे तीरगी नजर टूटने लगी। दम की कलम की लौ से जो सतरों की शाहराह, हरफों की कमकमों सी किरण फूटने लगी। एक बरक खत जो हद नजर तक चमक उठी, सारी फजाए वादिये अबजद दमक उठी। चमके जो अपनी लहर में अलमास से हुरूफ, उभरे खुद अपने वजन के एहसास से हुरूफ। आवाज का लिबास जो पहना ख्याल ने, आए जबां पे जीने करतास से हुरूफ। लेकर जो हर्फ सोज सदाकत की आग उठे, نکلی شعائے صبح قلم ہاتھ جاگ اٹھے، جاگے جو ہاتھ روح اشاعت بھی جاگ اٹھی اور بسترے ورق پہ کتابت بھی جاگ اٹھی، داخل ہوئی جو حجرے غفلت میں روشنی انگڑائی لے کے فن کی صداقت بھی جاگ اٹھی، غنچے کی طرح کلک جو لب کھولنے لگا خاموش انگلیوں میں قلم بولنے لگا، ایک ہاتھ ہے یہ کتنے شمائل لیے ہوئے ابلاغ کے ہزار وسائل لیے ہوئے، رکھے کفے ورق پہ کتابوں کے آفتاب برگے قلم پہ کوہ رسائل لیے ہوئے، ہاں کاتب کلید خزینہ لکھو اسے، تدوین علم و فن کا مدینہ لکھو اسے، گرچہ

अर्ज समा तोलते हुए सोई हुई खला की तहें खोलते हुए अफकार मेरे हाथ हैं इकदार मेरे हाथ शहकार मेरे हाथ हैं किरदार मेरे हाथ कर पर्दा गाहे वक्त के इज्दाद पर निगाह औजार मेरे हाथ हैं हती

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: कायनात रोती है, निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात।

0: सभी शहीद मौतबर मगर हुसैन एक है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशियात।

0: कायनात रोती है, निकल निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

0: आमा बुधी रहा आयो जीए एफएम नेटवर्क ते महरमुल हराम जी खुसूसी ट्रांसमिशन
1: हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद।
0: इमाम हुसैन अलैहि सलाम जन फरमायो हरगिज उनन माणन मंजा न थींजो जेके बेन जी गुनाहन ते खौफ जदा ऐं पंहिंजे गुनाहन खां गाफिल हूंदा आहिनि।

हुसैन जिसको आपका दरो दयार मिल गया, उसे खुद अपनी जिंदगी का एतबार मिल गया, नफस नफस उसे खुदा हजार बार मिल गया, सलाम या हुसैन का जिसे जवाब मिल गया। सलाम।

0: थक के बुखार तुझ पे फर्ज है।
1: या عين فبكي ولا تسأمي وحق البكاء على السيد।
2: सोजो लहन बनजरे हुसैन अलैहिस्सलाम खुसूसी शो अफसार अहमद के साथ।
3: चश्मे रसूल पाक का तारा हुसैन है, दुनियाए मुर्तजा का तुलारा हुसैन है। असगर की तिश्नगी से ये अफशा हुआ है राज, पहरे रजा अली तो कनारा हुसैन है। इमामुना व सैयदुना हुसैन इबन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस के मुअत्तर व मुतबर्रिक औराक हमारी तारीख ही नहीं

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सभी शहीद मौतेबर मगर हुसैन एक है।
2: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

0: सखर ऐं लाड़काणे टीवी में आशूर जा मातमी जुलूस कढिया विया। रोहड़ी में नव ढालन वारो तारीख़ी मातमी जुलूस पंहिंजे आख़िरी मंज़िल शोधा कब्रिस्तान वटि नहर थी वियो। सिलसिले जे ॿियनि इदारी खैरपुर ऐं कोठी ज़िलनि में बि करबला जे शहीदनि जी यादि में मातमी जुलूस बराम थिया। लाड़काणो ऐं कंबर शहदादपुर ज़िलनि जे नंढनि वॾनि शहरनि में मातम, जेका बाद कश्मोर कदकोट ऐं शिकारपुर ज़िलनि में बि योम आशूर अक़ीदत ऐं एतराम सां मल्हायो पियो वञे सिक्योरिटी सां। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं जानिसरनि जी अज़ीम क़ुर्बानी इस्लाम जो सरमायो आहे। सभिनी खे हमेशा हक़ ऐं सच सां गॾु बीहण घुर्जे। कराची में मर्कज़ी मातमी जुलूस में ॻाल्हाईंदे वरी वज़ीर मुअत्तली शाह चयो त मुहर्रम जे मौक़े ते को ख़ासि ख़तरो नाहे, पर पाकिस्तान जा दुश्मन ताड़ में रहंदा आहिनि। मुहर्रम जी सिक्योरिटी लाइ 60,000 अहलकार ऐं अमलदार मुक़रर कया आहिनि। पीडिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ बि पुलिस कोशिशूं करे रही आहे, पर अञा बाज़ियाब नाहे थी। डीजी रेंजर सिंध जो कराची में मर्कज़ी मातमी जुलूस जो दौरो, सिक्योरिटी इंतज़ामनि जो जाइज़ो वरितो। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़ रेंजर्स कंट्रोल रूम जो बि दौरो करे सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो। अमलदारनि डीजी रेंजर्स खे मर्कज़ी जुलूस जी सिक्योरिटी बाबति आगाही ॾिनी। ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त समूरी सिंध में अटकल 7,000 रेंजर्स अहलकार ऐं आफिसर मुक़रर आहिनि। डीजी रेंजर्स पारां सूबे में सिक्योरिटी जा इंतज़ाम बहितर करण जी हिदायत। सिंध में मोहर्रम अल हराम दौरान सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम कया विया आहिनि। हुकूमत जी पहिरीं तर्ज़ी आहे त कंहिं बि क़िस्म जो अणवणंदड़ वाकियो न थिए। हैदराबाद ऐं नवाबशाह में मातमी जुलूस जो दौरो करण बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सूबाई घरु वज़ीर ज़ियाल हसन अंजार चयो त सिंध पुलिस जूं पघारूं पंजाब पुलिस खां वधीक आहिनि। सिंध जे समूरनि डिवीजनल हेडक्वार्टर्स खे सेफ सिटी बणायो वेंदो। सूबाई काबीना में तब्दीली वारियूं ख़बरूं अफ़वाह आहिनि। पार्टी क़यादत चाहे थी त तब्दीली बि करे सघे थी। एमक्यूएम जे एमपीए पारां ऐवान में ॾिनल धमकी जी जांच जारी आहे। जांच रिपोर्ट स्पीकर वटि पेश करण बाद कार्रवाई थींदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन फरमायो, हरगिज़ उन्हनि माण्हुनि मंझां न थींजो जेके ॿियनि जी गुनाहनि ते ख़ौफ़ज़दा ऐं पंहिंजे गुनाहनि खां ग़ाफ़िल हूंदा आहिनि।
3: हुसैन ग़म में तेरे कायनात रोती है, निकल निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
4: आप सुन रहे हैं मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशियात।

0: जॾहिं करबला में फौजी यज़ीद मौला हुसैन खे घेरे छॾियो
1: त पोइ नवासाए रसूल फरमाइनि था
0: ऐ ज़ालिमो तव्हांखे औलाद मोहम्मद सां एतिरी ही नफ़रत आहे त छॾियो
1: मां पंहिंजे बचड़नि खे वठी सिंध हलियो वञा छो जो सिंध वारा
0: अली जे औलाद सां मोहब्बत कनि था सिंधी टोपी अजरक पाए रसूल जे अहल बैत जो एहतराम कनि था
2: हर दिल जी सदा या हुसैन।

हुसैन, समझेंगे जब आपका घर आना या हुसैन, सारे जहां के पर होगा होगा या हुसैन, सारे जहां के पर होगा।

0: सखर ऐं लाड़काणे डिवीजन में बि योम आशूर जा मातमी जुलूस कढिया विया। रोहड़ी में नव टालनि वारो तारीख़ी मातम जुलूस पंहिंजे आख़िरी मंज़िल शोदा कब्रस्तान वटि नर थी वियो। सखर शहर समेत ज़िले जे ॿियनि इलाइक़नि में बि आज़ादारी। खैरपुर ऐं घोटकी ज़िलनि में बि करबला जे शहीदनि जी यादि में मातमी जुलूस बरामद थिया। लाड़काणो ऐं कंबर शरदपुर ज़िलनि जे नंढनि वॾनि शहरनि में मातम। जेकाबाद, कश्मोर, कनकोट ऐं शिकार।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: चरें गुफ्तगु कंदो आहे उन जो अमल उन जी ज़बान जी तस्दीक कंदो आहे।
1: कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
2: आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसियत।

0: जॾहिं करबला में फौजी यज़ीद मौला हुसैन खे घेरे छॾियो
1: त पोइ नवासाए रसूल फरमाइन था
0: ऐ ज़ालिमो तव्हांखे औलाद मोहम्मद सां एतिरी ही नफ़रत आहे त छॾियो
1: मां पंहिंजी सिंध हलियो वञां छो जो सिंध वारा
0: अली जे औलाद सां मोहब्बत कनि था सिंधी टोपी अजरक पाए रसूल जे अहल बैत जो एहतराम कनि था।

0: सभी शहीद मौतेबर, मगर हुसैन एक है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात।
2: हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद।
3: इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंद फरमायो, असी अहले बैत जी मोहब्बत गुनाहन की इयां ही मिटाए छॾींदी आहे, जेड़ी रीत तेज हवा वणन जे पतन की केरे छॾींदी आहे।
4: ओ शाह जी यशा,

0: कायनात रोती है, निकल निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

0: चेहरा
1: होगा हर इंसान जब तुम्हारा या हुसैन
0: होगा हर इंसान जब तुम्हारा

ईरान की बहरी नाकाबंदी दौरान अमरीकी फौज पारा तहवील में वरतल बावी ईरानी मुहाना पाकिस्तान पहुंची व्या। नायब वजीर आजम इसाक डार तस्दीक कन्दे बावी ईरानी मुहाना कराची पहुंता है। संदन डे वापस लाए ईरानी इख्तियार से राबते में आयो। मुहानन की बाहिफाजत वापसी लाए अमरीका ईरान से लागीतो राबते में हुआसी। हि अमरीकी तहवील में वापस करायल ईरानी मुहानन जो चौथों ग्रुप है। अमेरिका ईरान जंग का पोए यूएई ईरान जो पहरियों भेरो आला सतह से बाजाबता राबतो बिन्हीं मुल्क विच में वेड़ी सर्विस भी बहाल थी वही। ईरानी परडेही वजीर अब्बास राखची यूएई के हमनसब विच में राबते दौरान खिते में थींदड़ तब्दीलियों से तफसीली गाल बोल कई वही। शेख अब्दुल्ला बिन जायद ईरान अमेरिका माहिरे से मुकम्मल अमल दारावत से जोर भर। चीनी राजधानी बीजिंग की सब का ऊंची 108 माड़ इमारत से नंढो जहाज टकराई वो। चीनी मीडिया मूजिब इमारत से टकराण का पोए जहाज जो मलबो जमीन से पकड़ वो। वाक्य में फौरी तौर कें भी जानी नुकसान की तस्दीक न थी। चीनी मीडिया जो चवण है फिलहाल इो भी वाजे न है नंढे जहाज में केतरा मू सवार हुआ।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन फरमायो, हरगिज़ उन्हनि माण्हुनि मंझां न थींदो जेके ॿियनि जी गुनाहनि ते ख़ौफ़ज़दा ऐं पंहिंजे गुनाहनि खां ग़ाफ़िल हूंदा।

0: जॾहिं करबला में फौजी यज़ीद मौला हुसैन खे घेरे छॾियो
1: त पोइ नवासाए रसूल फरमाइन था
0: ऐं ज़ालिमो तव्हां खे औलाद मोहम्मद सां एतिरी ही नफ़रत आहे त छॾियो
1: मां पंहिंजे बचड़नि खे वठी सिंध हलियो वञा
0: छो जो सिंध वारा अली जे औलाद सां मोहबत कनि था सिंधी टोपी अजरक पाए रसूल